0: It's coming out of Amy Grant. We'll all remember each other because we were only here for a season. All right, Hero, new release. Nidhi Agarwal.
1: खून और बारूद से खेलने वाले वंश का वारिस है कृष्णा. उसके दादाजी तुम जैसे कमीनों के बाप थे वो. और उसके मामा तुम जैसे छोटे मोटे चोरों के बादशाह हुआ करते थे.
2: तो फिर है कहाँ वो आ?
1: बस इंतजार करो, जल्दी अपनी आंखों से देखो.
3: कप्तान, कोई आ रहा है.
2: गोलियों से भून डालो उसे.
4: ए, चलाओ गोलियां.
5: बात है क्या? हाँ, अमेरिका का रिश्ता है. बहुत अच्छा है, बहुत पैसे कमाता है.
3: ये तो अच्छी बात है.
2: Out of the box. Go.
5: हमने जो ऑर्डर किया.
0: I don't think this is a song, so I am not certain what's happening here.